0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: लोकेशन लोकेशन लोकेशन इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
2: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
1: फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
2: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
1: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
2: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 ग्रीन्स बाय डैनियो प्राइम लोकेशन
1: High appreciation
2: in Dubai.

0: This is Leica Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
2: Are we there yet?
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
2: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
2: I switched to Simzy before we left London.
3: Simzy? Since when are you the tech expert?
2: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
5: T's and C's apply.
6: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच ना।

ओ मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना।

सुनिए हाथ वैसगा, नानक भक्तां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास। मन्ने की गत कहीं ना जाए, जे को कहे पिछे।

होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाव, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड़ हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

है साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साह पत साहिब, नानक रहन जाई।

अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बोला खोएं लख होवें लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। ए

जोर ना जुगती छुटै संसार, जिस हाथ जोर कर वेखे सोए, नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म

0: Leica Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anup Chalota.
3: Jaam chalne lage, dil machalne lage.
2: On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
7: T's and C's apply.
8: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
8: high appreciation.
9: In Dubai.
10: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक
11: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा
10: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेज एंड हाई स्कूल हैरो 30th अगस्त वुडमैनस्टर्न स्कूल साउथ लंदन डिनर फ्रॉम 5 PM शो स्टार्ट्स एट 7 PM फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947
12: Two businesses.
13: Same town.
12: Same service.
13: One appears on page one of Google.
12: The other doesn't.
13: Guess which one gets the customer?
12: The truth is brutal.
13: The first page of Google gets the business.
12: Everyone else gets what's left.
13: So here's the real question.
12: When your customers search for what you sell, do they find you?
13: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
12: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
14: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
15: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
14: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs.
15: With the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
14: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
15: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
16: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com.
17: टीजेंसी सप्लाई

0: Schlaf nach Zockloss, ab her Stockloss.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? Leica रेडियो और Leica गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@leicaradio.com।
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Yeh Yavo only on Leica Gold.

0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
1: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है। बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके। जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट। एक शाम सोलफुल म्यूजिक, डिवोशन और एनर्जी के नाम। टिकट्स बुक कीजिए ऑन SKLPC.com/BSS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
3: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
3: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
3: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
3: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
4: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel, prime location.
4: High appreciation
5: in Dubai.
6: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com।
7: सितंबर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
8: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
9: ए तमे स्त्रीओ अमने छे ने पुरुषो ने खोटा ओगोवानो बंद करो।
7: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो,
10: हालो पटेल भाई नी जान मा।
11: गोल्ड ब्रेकफास्ट विथ काजल ऑन लाइका गोल्ड।

0: Greater London. This is Kajal on Breakfast.
1: मोहब्बत है क्या चीज? कुछ तो कहो, कहो ना, बोलो।

0: का गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
2: high appreciation.
3: In Dubai.
4: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
5: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरेबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरेबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
6: सप्टेम्बर महीना मा हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे.
7: तमे बधा पुरुषो तो लग्ने लग्ने कुवारा हो छो.
8: ए तमे स्त्रीओ अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा ओगोवानो बंद करो.
6: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा. हवे राइसली पोटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा. टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270. नाटक नु नाम याद राखजो.
9: હાલો રે હાલો, આ જન્માષ્ટમી કાન્હાના રંગમાં લંડન પણ રંગાશે. સ્ટાર્ડમ મીડિયા પ્રેઝન્ટ્સ જન્માષ્ટમી ભજન જેમિંગ વિથ નંદલાલ છાંગા. ભક્તિના સુર, ગરબાની મસ્તી અને કૃષ્ણા સેલિબ્રેશન, ઓલ ઇન વન અનફર્ગેટેબલ ઇવનિંગ. 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
10: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner, Laika Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
11: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
13: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg is only £7.99 exclusively at quality food stores.
14: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. टीजेंसी सप्लाई.

0: प्यार तुमसे मुझे।
1: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
2: It's summer on the Lyca Radio Network.

0: थोड़ा देसी।
1: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
0: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
1: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वटवुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
2: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
3: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
2: बीकानेर वाला परंपरा भी
3: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फोर्ड, IG26HA. कॉल 07555-50-6015.
4: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com. टीजन सी सप्लाई.

0: Now, don't forget the legend, Kavitha Krishnamurthy, is performing live at the Royal Albert Hall on Sunday, 1st of November, brought to you by Sanatan Events as a Diwali special. Tickets are available from the venue box office. And of course, as you always know, exclusive radio partner, Leica Radio Network.
1: Leica Extra Podcast Update.
0: An interesting one this week. It's our 29th episode and it's hosted by Ravi Sharma, who speaks to Mr. Praveen Patni, the director of Minar Jewelers, about how gold prices are affecting customers and purchasing decisions. Do the new generation, however, of South Asians still consider gold as a valuable asset? Find out on our episode of the Leica Extra podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here.
2: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए.
3: काजल्स मॉर्निंग मंत्रा प्रेजेंटेड बाय मंत्रा हॉलीडेज, योर फ्रेंडली हॉलीडे पार्टनर फॉर यूके, यूरोप एंड अदर डेस्टिनेशंस. फॉर योर मेमोरेबल हॉलीडेज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड बजट, कॉल 0203-773-633 टू बुक योर ड्रीम हॉलीडे.
4: काजल का मॉर्निंग मंत्रा

0: Virgin's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday. ये है Like a Gold TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 और visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHub.com.
2: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
3: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
4: Govind bolo Hari Gopal.
5: Krishna Janmanu Anandutsav. Ekaj Raat Ekaj Anubhav.
4: Nand ghar anand bhayo jay kare.
3: 5th September at Wembley, 6th September at Crawley. Tickets only £25. For tickets booking, visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or stardomedialtd.com.
5: Stall and sponsorship mate call 07940924667. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
6: Search is changing.
7: Customers aren't just using Google anymore.
6: They're asking AI.
7: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
6: One business, one recommendation.
7: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
6: Will your business be the answer?
7: Or the one that got left behind?
6: The future of search has already started.
7: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
6: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
0: 0730-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-99-8823.
8: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट. ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
8: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
10: 40 मिलियन पीपल लिसन टू कमर्शियल रेडियो ईच वीक. दैट्स 80 मिलियन इयर्स, गिव अ टेक. Amplify your advertising at radiocenter.org.
11: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट. Sunday, the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
12: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

ना के हाँ हाँ हाँ और सुनो हाँ एक एक परी थी। क्या? एक परी थी, तोता परी। हंसी वो बड़ी थी, हाँ, हंसी वो बड़ी थी। गगन देश था उसका। क्या? गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका। चले रात आगे, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो, हाँ।

0: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
1: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
0: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
1: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
0: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
1: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
0: high appreciation.
1: In Dubai.
2: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोठा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
3: तुम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
2: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो 30th अगस्त वुडमैनस्टोन स्कूल साउथ लंदन डिनर फ्रॉम 5 PM शो स्टार्ट्स एट 7 PM फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल, Atoll protected. Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
4: ड्रीमिंग ऑफ पैराडाइज?
5: डिस्कवर द इंडियन ओशन विद स्काईलॉर्ड क्रूज एंड हॉलीडेज। बुक एक्सक्लूसिव एमिरेट्स हॉलीडे ऑफर्स टू मॉरिशस, द मालदीव्स, सेशेल्स एंड श्रीलंका।
4: चूज फ्रॉम लग्जरी बीच एस्केप्स, फैमिली रिसॉर्ट्स एंड इनक्रेडिबल मल्टी सेंटर हॉलीडेज, ऑल एट एक्सक्लूसिव प्राइसेस।
5: कॉल स्काईलॉर्ड क्रूज एंड हॉलीडेज टुडे ऑन 01923883100. That's 01923883100.
4: At all protected.
6: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners like our radio network.
4: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
7: Gajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian

0: fashion houses. Visit Gorgeous Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Gorgeous Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Gorgeous Couture.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99. Exclusively at quality food stores.
4: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
5: Artist of the week is brought to you by our new podcast Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट ट्रेवल हब World.com
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24-hour line.
4: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
5: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
6: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
6: high appreciation.
7: In Dubai.
8: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
9: 07300998823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेशन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823
10: हॉन्स्लो अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास
11: बीकानेर वाला
12: परंपरा भी
13: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो TW31QT कॉल करे 07487-687-885
14: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com टीएनसी सप्लाई
15: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान The sun is out, and so are the summer hits on Like a Gold.
16: तुमने किसी से कभी प्यार किया है?

बृहस्पतिवार वर्ष 2026 के अगस्त महीने की 20 तारीख हो गई आज, और साहब वक्त हो गया है मनोरंजन का, हमारी आपकी मुलाकात का, संगीत की सौगात का। यस, 10:05 और बहनों भाइयों अब से लेकर के दोपहर बाद 1 तक मैं रवि शर्मा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। लेकिन पहले भाई आप सब की ओर से धन्यवाद कह दूँ काजल को, शिल बी बैक टुमारो मॉर्निंग। आज भाई गीतों में यादें हैं, फरियादें हैं, शिकवे हैं, शिकायत हैं, लेकिन कुछ मजबूत इरादे भी हैं, कुछ निभाए जाने वाले वादे भी हैं। तो साहब कुछ हटकर, कुछ कटकर आम गीतों से देखिए, धोखा खाया हुआ दिल, ठुकराया हुआ दिल,

0: लहरों को जाने कैसे किनारा समझ लिया, जुगनू को एक चमकता सितारा समझ लिया। उसने यकीन दिलाया ना खाई कभी कसम, हमने किसी को खुद ही हमारा समझ लिया, फिर वो हमारा कैसे हो सकता था साहब।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: TravelHub.
2: At all protected.
1: Leica. Birmingham. We are coming. September 1st. Leica Radio Birmingham.
0: किसी और को क्या दोष दे साहब, हमने ही लहरों को जाने कैसे किनारा समझ लिया। खुलकर वो कह सका नहीं कि जरूरत नहीं तेरी, हमने मगर नजर का इशारा समझ लिया। अब बात बेरुखी की चलो और बात है, कर लेंगे बेवफाई गवारा समझ लिया। लहरों को जाने कैसे किनारा समझ लिया, जुगनू को एक चमकता सितारा समझ लिया। बस यही गलती हो गई।

क्या कहेंगे इस संगीत रचना को भाई, कौन बना सकता है ऐसी धुन सिवाय आर डी बर्मन की। अंदाजे से करा मेरा ख्याल है कि आर डी बर्मन की बनाई धुन है, लेकिन इसमें जो इफेक्ट्स भाई डाले गए हैं और फिर किशोर दया की आवाज़ में। ये गीत आपने सुना फिल्म शालीमार से, और इससे पहले जो गीत यानी जिससे हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी शायरी के साथ जोड़कर सुनाया, पत्थर के सनम फिल्म का गीत याद होगा आपको भाई, शायद कौन सा साल था वो, 1967 का, जब ये फिल्म आई थी। मनोज कुमार साहब दो दो हीरोइंस के साथ, उनमें एक मुमताज थी जो नो भाई उतनी चोटी पर नहीं थी, जो चोटी पर थी वो थी वहीदा रहमान। तो साहब ये फिल्म जो है पत्थर के सनम हिट हुई थी उस ज़माने में, गीत तो हिट हुए ही थे। तो पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, और ये अभी अभी आपने सुना, हम बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर नहीं पाए, मजबूरी थी कोई विवशता थी। खैर साहब, गीतों की शुरुआत, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको बता दें कि आज 20 अगस्त है, और ये 20 अगस्त का दिन हमारे बैसन साहब कह रहे हैं कि शर्मा जी आज तो रेडियो श्रोता दिवस है, हा? रेडियो लिसनर्स डे, भाई तमाम श्रोताओं का हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये कहाँ इसकी शुरुआत हुई, कहाँ क्या इतिहास क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? भाई भारत में ये दिन शुरू हुआ था 1921 में। अरे वाह, भारत में रेडियो श्रोता दिवस मनाने की परंपरा शुरू करने का श्रेय क्रेडिट जाता है छत्तीसगढ़ को, और इस नए राज्य के रेडियो लिसनर्स ने 20 अगस्त 1921 को हुए प्रथम रेडियो प्रसारण की याद में, पहली जो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी भाई उसकी याद में, हर साल 20 अगस्त के दिन ये रेडियो लिसनर डे मनाने का फैसला किया, और बड़ी सफलतापूर्वक चल रहा है, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं तब से, लगातार जारी है। श्रोता दिवस पर तमाम श्रोताओं को, प्रस्तुतकर्ताओं यानी प्रेजेंटर्स को, लिसनर्स को, प्रोड्यूसर्स को भाई बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। हमारे बैसन साहब कहते हैं कि एक जमाना था जब मैं बीबीसी रेडियो सुनता था, सिलोन से सुनता था, विविध भारती के कार्यक्रम सुनता था, अमेरिका रेडियो, ऑस्ट्रेलिया रेडियो, मास्को भाई कहाँ कहाँ के रेडियो स्टेशन हमने नहीं सुने, लेकिन नियमित रूप से रेडियो सुनता था। मगर आज वक्त की कमी के कारण हम सुनते हैं कभी कभी बीबीसी वर्ल्ड सर्विस या विविध भारती। वो भी क्या दिन थे जब हम स्कूल में थे, और उन दिनों हमारा जो टाइम टेबल था ना वो शुरू हुआ करता था रेडियो से। भाई एक ज़माना था जब मैं भी बीबीसी वर्ल्ड सर्विस बहुत सुनता था, भारत में आता था वो बड़ा स्पष्ट और अर्ली उठ के, क्योंकि सुबह 6 बजे लगभग जो है खबरें आती थी, और वो खबरें बहुत भरोसेमंद मानी जाती थी। हालांकि आज का हमें नहीं पता कि लोग कितना भरोसा करते हैं, पर उस ज़माने में खासकर जब कोई युद्ध चल रहा हो, कोई क्राइसिस हो रहे हो, तो सब ट्यून करते थे कि भाई वर्ल्ड सर्विस सुनेंगे बीबीसी की, और वहाँ से भरोसेमंद सूचनाएं समाचार मिलेंगे। और भाई वो आवाज़ें बड़ी परिचित हो गई थी मुझे, कुछ नाम अभी याद हैं जैसे कि राजनारायण बिसारिया, ओंकारनाथ श्रीवास्तव, और साहब विजय राणा, और अचला शर्मा, और साहब श्रीमती कोल और महेंद्र कोल, और उनकी धर्मपत्नी बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में थी रजनी कौल, भाई उन्हें मैं सुना करता था और इन आवाज़ों से परिचित हो गया था। भारत में उस समय कभी सोच भी नहीं सकता था कि कभी विदेश जाना होगा और इन लोगों से मुलाकात होगी। मैं आचार्य जी कहता हूँ उनको, जो हमारे बुधवार जी थे, कैलाश बुधवार जी, हेड ऑफ द हिंदी एंड तमिल सेक्शन इन बीबीसी वर्ल्ड सर्विस, जो कि बुश हाउस में होता था भाई, वहाँ वो सब लोग वहाँ से प्रसारित करते थे, भारत में सुनते थे हम। और फिर एक वक्त आया कि जब इन सभी लोगों से मुलाकात हुई, बहुत प्यार मिला, बहुत सारे आशीर्वाद मिले, क्या कहूँ साहब, रजनी कौल जी, ओंकारनाथ श्रीवास्तव और कैलाश बुधवार, कैलाश जी, विजय राणा साहब, बहुत प्यार मिला। और मैं क्या बताऊँ, अब आज दुनिया में कैलाश जी नहीं हैं, लेकिन मैं उनके चरण छूता था वह बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में, वो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत तारीफ़ करते, और जब मैं सनराइज़ में चला गया तो वहाँ भी वो कहते बहुत अच्छा कर रहे हो,
लगे रहो मुन्ना भाई, और बहुत अच्छा लगता था भाई उनका ये कहना। और उनके अलावा जो अचला शर्मा हैं या ये आज भी रेडियो से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, और रजनी जी हैं, और भाई जो ओंकारनाथ श्रीवास्तव हैं जो अब नहीं है दुनिया में, लेकिन साहब मैं सबको याद करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ, और रेडियो की दुनिया में वन एंड ओनली वॉइस जिनके लिए भाई कहते हैं कि वो तो फादर ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग कहलाए जा सकते हैं, जिन्होंने रेडियो की विधा को बहुत लोकप्रिय बनाया, वन एंड ओनली जनाब अमीन सयानी साहब। अमीन सयानी साहब के साथ काम करने का मौका मिला भाई, हमारे मेरा प्रोग्राम उनका प्रोग्राम एक ही स्टेशन से प्रसारित होता था, लेकिन वीटी राइस के माध्यम से। और एक दिन ऐसा भी आया कि भाई उन्होंने मेरे बारे में लिखा, और एक वो दिन भी आया जब मैंने उन्हें इंटरव्यू किया, और जब वो टैक्सी में आ रहे थे तो रेडियो सुनते हुए आ रहे थे, और मैं लोगों को बता रहा था कि आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर से करवाऊंगा, और ये बातें मैं उन्हीं के स्टाइल में बोल करके भाई ऐसे बोल रहा था, हाँ तो भाइयों तैयार रहिएगा आज आपसे मुलाकात करने के लिए एक बहुत जाने माने भाई ब्रॉडकास्टर आ रहे हैं, और साहब जब आप उनसे मिलेंगे तो आपका दिल क्या कहे बाग बाग हो जाएगा। लेकिन ये भी बता दूं कि भाई वो थोड़ा जोर से जो बोला करते था, हाँ तो फिर अगला गीत कौन सा होगा, तो ऐसे मतलब वो कहते थे, मैंने पूछा उनसे, कहते कि भाई हमारे पास में एक फैक्ट्री थी, वहाँ से ठक ठक की आवाज़ हमारे स्टूडियो तक पहुँचती थी, और स्टूडियो हमारा साउंड प्रूफ उस समय नहीं था, तो मैं थोड़ा ज़ोर से चिल्ला के बोलता था ताकि वो आवाज़ दब जाए मेरे शोर में, पर अब तो भाई आपके सामने माइक है और धीरे बोलेंगे, और साउंड प्रूफ स्टूडियो है, एयर कंडीशन स्टूडियो है, आपको मालूम है जब वो कड़ाके की गर्मी पड़ती होती थी ना, हमारे यहाँ जमाने वाली ठंड होती है स्टूडियो में,

0: के जिक्र करेंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, हॉकी का जिक्र करेंगे, क्रिकेट की बात बताएंगे, फिल्मों की चर्चा होगी और आज के प्रमुख समाचार सुनवाएंगे थोड़ी देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके आज जो रेट दे रहे हैं, अच्छा वो कहते हैं पैसे भिजवाओ, सही मौका है, क्योंकि फॉर वन पाउंड टुडे दे आर गिविंग 130.05 रुपीस। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: This is your business. This is your business supercharged with the help of Zero Accounting Software. These are your numbers. These are your numbers sorted with the help of Zero Accounting Software. This is you.
3: Hi.
2: This is you taking business where you want with the help of Zero Accounting Software.
3: Hello, world.
2: This is your business supercharged with the help of Zero and having your numbers sorted all at the same time so you can finally focus on taking business where you want to. Supercharge your business today with the help of Zero.
3: Search Zero with an N.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: पैटको माइक्रोवेव।
1: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट Sunday the 6th of September at the Mecha Lohana Center, London. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए। For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
5: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
5: high appreciation.
6: In Dubai.
5: London. Jay's Entertainment presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shivdasani. Playback singer Amantrika. Or soulful singer Mayuri Patalia live Harrow mein. Saturday, 3rd October, 7 PM, Harrow Art Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Art Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
8: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
7: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
9: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 kW बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com।
10: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality

0: food store today. Falcon Chucky Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chucky Atta 10kg is only £7.99 exclusively at Quality Food Stores.
1: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक
2: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा
1: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th August हेच एंड हाई स्कूल हैरो 30th August वुडमिंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन डिनर फ्रॉम 5 PM शो स्टार्ट्स एट 7 PM फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947
3: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लता मंगेशकर की आवाज नौशाद का संगीत और फिल्म साथी का 1963 में शायद आई थी ये फिल्म। राजेंद्र कुमार और कौन था साथ में, वैजयंती माला थी भाई, मुझे क्या पता इतनी पुरानी फिल्मों के बारे में। आजकल के नौजवानों को कहाँ जानकारी है पुरानी बातों की, वो बाली भाई को है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और बहन भाइयों, खबरों का वक्त हो गया है। खबरों में आज एक तो चर्चा में है हैरी और मेगन वापस आ रहे हैं। दिल चाहता भाई उनके नाम गाना लगा दूं, आप लौट चले आगे चलकर। और भाई दूसरी खबर रिजल्ट्स आने की, अब ये बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं GCSE के, और कहते हैं कि जो ग्रेड पाने वालों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन पास होने वालों की संख्या में थोड़ी कमी आई। वो पीछे कोविड वाले दौर में चले गए हैं वो रिजल्ट्स। भाई जो भी हो, रिजल्ट्स के बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के दुनिया भर के समाचारों में क्या कुछ है।
1: मनोरंजन विथ रवि शर्मा।
0: लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज की समाचार सुनिए। अब्बास अराग्जी ने ट्रंप के इकोनॉमिक डी डे पर निशाना साधा है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग्जी ने अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ ऐलान किए गए तथाकथित इकोनॉमिक डी डे पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमेरिका का यह कदम असल में उसकी अपनी माली परेशानियों से, आर्थिक कठिनाइयों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अराग्जी ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका का इकोनॉमिक डी डे उसकी अपनी आर्थिक मुश्किलों से ध्यान हटाने का तरीका है। UNSC में भारत का बयान आया है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने कहा है कि सदस्यता का इस्तेमाल आतंकियों को वैध ठहराने की कोशिश नहीं होना चाहिए। भारत की ओर से कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का इस्तेमाल आतंकियों को वैध ठहराने के लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल वजहों से किसी ऑर्गेनाइजेशन को आतंकी घोषित करना या किसी आतंकवादी का नाम पाबंदियों की लिस्ट से हटाने की कोशिश करना सही नहीं है। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बने ढांचे पर बुलडोजर चला दिया गया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर कुछ ऐसे ढांचे खड़े हो गए थे जिनके बारे में बताया गया है कि ये ढांचे हाई कमीशन की मंजूर सीमा से बाहर बनाए गए थे। जो जमीन दी गई थी उनको उसमें बना कर बाहर और जैसे आगे बढ़ा करके बना लेते हैं लोग। संबंधित एजेंसियों ने JCB मशीन की मदद से यह कार्रवाई की और हाई कमीशन के बाहर वाली लेन में बनाए गए ढांचों को और बैरिकेड्स को हटा दिया गया। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के आज 22 अगस्त के पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज नामक प्रोग्राम को पुलिस ने मंजूरी दे दी है। हालांकि पुलिस ने कार्यक्रम के लिए कुछ शर्तें लगाई हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, इसके पश्चिमी हिस्से में कैमरून की सीमा के पास एक सोने की खदान में भूस्खलन होने से 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और ये वही हादसा हुआ है। बताया गया कि खदान का एक हिस्सा लोगों के ऊपर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल मंगलवार को ये जो है हादसा हुआ। रूस की तरफ से रात भर किए गए मिसाइल हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। हमलों में कम से कम 23 लोग जख्मी भी हुए हैं। केन्या में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इक्वाडोर के इंटेलिजेंस चीफ, उनकी पत्नी समेत 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि केन्या में कल बुधवार को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इक्वाडोर के इंटेलिजेंस चीफ और उनकी पत्नी की तो मौत हो गई। हादसे में 5 अमेरिकी सिटीजन समेत कुल 7 लोगों की जान गई। प्रिंस हैरी और मेगन मर्केल ब्रिटेन वापस लौटने की तैयारी में हैं। सितंबर से उनके बच्चे ब्रिटिश स्कूल में पढ़ेंगे। बताया जा रहा है कि ड्यूक और डचेस ऑफ सेक्स प्रिंस हैरी और मेगन मार्केल अमेरिका से ब्रिटेन वापस लौटने की तैयारी में है। डेली टेलीग्राफ और द सन की रिपोर्ट के बाद सामने आई है ये जानकारी कि हैरी और मेगन इसी महीने के आखिर में लंदन के बाहर एक प्राइवेट और गैर शाही घर, वो उसका शाही परिवार से नहीं जो संबंध होगा, गैर शाही घर में शिफ्ट होने वाले हैं। उनके दोनों बच्चे 7 साल के प्रिंस आर्ची और 5 साल की प्रिंसेस का लिलीबेट का सितंबर में ब्रिटेन के स्कूल में दाखिला कराया जाएगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक अभूतपूर्व और बेहद कड़ा आर्थिक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है, पाबंदियों से भरा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि उन्होंने ईरान को समझौते के लिए सबसे ज्यादा मौका दिया, लेकिन ईरान इसका फायदा उठाने में नाकाम रहा है। और साहब खेलों की बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप हॉकी में 3-5 से शिकस्त दे दी है, हरा दिया है। और भारत ने श्रीलंका को क्रिकेट में पहला टेस्ट मैच जो 165 रनों से हरा करके अपनी स्थिति थोड़ी और मजबूत की है वर्ल्ड कप टेस्ट क्रिकेट के लिए। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

कह रहा था ना कि भाई एक गीत याद आता है कि मेगन और हैरी वापस लौट रहे हैं, और भाई बच्चों की पढ़ाई की तो वजह है ही, लेकिन वैसे भी भाई जब अपना घर, अपना देश, अपनी वो गलियां कूचे याद आते हैं तो व्यक्ति का मन करता है लाख लुभाएं महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है।

0: है लाइका गोल्ड.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: और लेट मी टेल यू द रेट्स वाइज, समय अगर आप उनके माध्यम से पैसे भेजते हैं तो LemFi वाले ये रेट दे रहे हैं, एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में यानी इंडियन करेंसी में 130.59 रुपीस, पाकिस्तानी 377.01 रुपीस, श्रीलंकन रुपए 449.69, बांग्लादेशी टके 166.25 और अफगान अफगानी 89.3.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Well, gold is trading at the rate of 105.68 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
6: हेरोल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
7: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
8: Dad,
9: what's wrong, beta?
8: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
9: I will run down to the money exchange now.
8: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
9: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
8: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
11: गारंटेड.
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल,
11: फोन 0208574 8410.
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
12: सप्टेम्बर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे.
13: तमे बता पुरुष हो तो लग्ने कुवारा हो छो.
14: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा होगोवानो बंद करो.
12: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा. हवे राइसली, पॉटर्समार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन मा. टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 0793153427. नाटक नु नाम याद राखजो
15: हालो पटेल भाई नी जान मा.

0: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में और वही समाप चिंतन सुना करते हैं। माय नेम इज रवि शर्मा और मनोरंजन प्रोग्राम लेकर मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद एक बजे तक हाजिर हूं। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:05 हुआ चाहते हैं। वक्त है चिंतन का, थॉट फॉर द डे। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: चिंतन चिंतन।
0: नॉरवुड ग्रीन से श्रीमती सरस्वती शर्मा याद दिला रही हैं कि आज के चिंतन में जिक्र कीजिएगा सद्भावना दिवस का। ये क्या होता है भाई? तो सरस्वती जी बता रही हैं कि ये हर साल हिंदुस्तान में मनाया जाता है सद्भावना दिवस। आसान भाषा में कहें तो भाईचारा डे, योम ए भाईचारा। क्यों मनाया जाता है आपको बताएं कि 20 अगस्त भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है और उनके जन्मदिन को भारत में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है, जिसका उद्देश्य सुनिए राष्ट्रीय एकता, शांति, आपसी भाईचारा और सभी कम्युनिटीज के बीच एक प्रेम का, सद्भावना का रिश्ता जो बनाना और उसे बढ़ाना है। अब आपको बता दें भाई, भारत की ओर से कई बार ऐसी कोशिशें की गई, जैसे कि पड़ोसी देशों के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहें, तो जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तो वो एक बस लेकर के पाकिस्तान गए थे, अच्छा स्वागत हुआ। नवाज शरीफ थे प्रधानमंत्री, वहां लाहौर में एक प्रोग्राम हुआ, इसे सद्भावना कहते हैं। और वाजपेयी जी ने कहा कि दिल्ली और लाहौर के बीच की दूरी कम हो रही है। भाई, दिलों की दूरी कम होगी तो फिर दिल्ली और लाहौर की दूरी भी कम होगी। लेकिन उसके फौरन बाद आप जानते हैं क्या हुआ। मिलिट्री को यह कभी भी स्वीकार नहीं होगा कि दोनों देशों के बीच, खासकर पाकिस्तान की मिलिट्री को, क्योंकि वो सरकार पर हावी रहती है। कारगिल हो गया, कारगिल। और साहब, कारगिल के बाद उसके बाद फिर भी कोशिशें हुई दोनों देशों की तरफ से, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावट आती गई। जैसे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को इनवाइट किया। जब प्रधानमंत्री के पद की शपथ वो लेने लगे, ओथ टेकिंग सेरेमनी में पाकिस्तानी वजीर आजम को इनवाइट किया गया ताकि दोनों प्रधानमंत्री एक बार मिल सके, बातचीत शुरू हो। लेकिन उसके बाद वही ढाक के तीन पता। आपको याद होगा कि एक बार नरेंद्र मोदी बिना प्रोटोकॉल के बस पाकिस्तान किसे ऊपर से गुजरते हुए उन्होंने कहा कि पता लगा नवाज शरीफ के परिवार में शादी है, तो प्लेन लैंड हुआ। और देखिए कैसे, जैसे कोई अपने घर लौट रहा हो, अपने पड़ोसी के घर लौट रहा है, आ रहा है, तो बोले भारत जाते जाते थोड़ी देर हम आपके यहाँ शगन देने आ रहे हैं। ये कुछ ऐसी बातें जिनमें सद्भावना झलकती है। लेकिन बहनों भाइयों, दूसरी तरफ युद्ध के बादल भी मंडराते रहते हैं और वहां की मिलिट्री की सोच कुछ और है। अब लोग कहने लगे हैं कि अपने ही देश के नागरिकों पर अगर आप अत्याचार करेंगे तो फिर पड़ोसियों से कैसे निभाएंगे सद्भाव। एक अच्छी सोच। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे आदमी के घर में हेल्प करने पहुंच गए जब प्लेग फैला हुआ था, लोग मर रहे थे, कोलकाता की ये घटना है। तो एक आदमी जो कट्टर विरोधी था नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस का, उनसे लड़ने के लिए मौका ढूंढ रहा था। नेताजी सबके घरों से बीमार व्यक्तियों को, जबकि उनसे बचते थे लोग, ये छूत की बीमारी है, पर सुभाष जी उनके घर में गए। उसका बेटा बहुत बीमार था, उसकी प्रारंभिक यानी जो प्रायर जो देखभाल थी थोड़ी देर वो की, दवाइयां दी और उसके बाद हॉस्पिटल भी ले गए। जब उस व्यक्ति को पता चला तो वो रोते रोते सुभाष जी के पास गया, मेरे बेटे को बचाना है आपके लिए, क्या किसी ने आपको प्रेरित किया? मैं तो आपका कट्टर दुश्मन रहा हूं। भाई उन दिनों हिंदुओं और मुसलमानों में भी काफी भेद चल रहा था, और ये व्यक्ति मुसलमान था लेकिन उस दिन वो नेताजी के प्रति आभार व्यक्त कर रहा था, आंखें भीगी थी और मन में एक प्रेम उमड़ रहा था, गले मिलकर के उसने नेताजी का धन्यवाद किया कि आपने मेरे बेटे को बचा लिया। भाई सद्भावना कोई एक दिन में मनाने वाली चीज नहीं है, अपनी जिंदगी में अगर हम उतार लें ये भाईचारा, ये आपसी सद्भावना है। 31 अक्टूबर 1984 से इस दिन का सेलिब्रेशन हिंदुस्तान में शुरू हुआ। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के 1989 तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। इस दिन सरकारी संस्थानों में, संगठनों में, दफ्तरों में सद्भावना की प्रतिज्ञा भी ली गई, चाहे कोई किसी भी रंग का हो, किसी भी मूल का हो, कोई भाषा बोलता हो, किसी जाति से हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, भाषा, क्षेत्र, इन सब के भेदभाव से ऊपर उठकर जब अपने देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने का वचन देते हैं तो ये सद्भावना दिवस बन जाता है, सद्भावना दिवस का सेलिब्रेशन बन जाता है। तो बहनों भाइयों, यही है संदेश आज के दिन का, सद्भावना दिवस का। दो ही बातें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या मेरे बन जाओ या अपना बनाकर देख लो। भुला दो गिले शिकवे, मिटा दो नफरत को दिलों से,

0: दो ही बातें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, या मेरे बन जाओ या अपना बना कर देख लो। भाई आज सद्भावना दिवस है, उस अवसर पर ये चिंतन आपने सुना जिसके लिए आलेख हमें भिजवाया नॉरवुड ग्रीन से श्रीमती सरस्वती शर्मा जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई आज 20 अगस्त को राजीव गांधी का जन्मदिन, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। अब पॉलिटिशियंस के भाई आलोचक भी होते हैं, प्रशंसक भी होते हैं, पर कुछ बातें अगर उनकी आलोचकों की दृष्टि में सही नहीं थी, लेकिन कुछ बातें उनके जीवन से जुड़ी हैं जिनकी प्रशंसा की जा सकती है। और व्यक्ति के जाने के बाद तो भाई हम उनकी अच्छी बातें याद रखने की कोशिश करते हैं। राजीव गांधी 20 अगस्त 1944 में जन्मे थे। देवराज अर्स का भी जन्मदिन आज ही पड़ता है, ये कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और एक नाम सुना होगा आपने, एन आर नारायण मूर्ति, इंफोसिस के को फाउंडर। भाई अभी एक दो दिन पहले सुधा मूर्ति जी का जन्मदिन था, उनकी पत्नी का। आज नारायण मूर्ति अपना जन्मदिन मना रहे हैं, 1946 में जन्मे थे, बेंगलुरु में इंफोसिस कंपनी दुनिया में मशहूर है। और भाई इनका परिचय लोग यूं भी देते हैं कि ये वो हैं जिन्होंने अपनी बेटी ऋषि सुनक के साथ ब्याही है, यानी पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के ससुर हैं एन आर नारायण मूर्ति। दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट क्या कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं। तानिया सचदेव भारतीय के शतरंज खिलाड़ी आज ही के दिन जन्मी थी। और भाई आज ही के दिन मेरे शहर रोहतक में जन्मे थे एक एक्टर, उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है लेकिन भाई हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानते हैं और दोनों एक दूसरे को मानते हैं, नाम है उनका रणदीप हुड्डा। हैप्पी बर्थडे भाई, आपके घर परिवार में भी अगर किसी का जन्मदिन हो तो हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं, बधाइयां। भाई 20 अगस्त को भारतीय संदर्भ में कुछ पुण्य तिथियां हैं, बरसीज। संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, पंजाब में उन्हें याद किया जा रहा है, पुण्यतिथि उनकी याद की जाती है आज 20 अगस्त को। 1985 में उनका निधन हुआ था। इसके अलावा भाई और भी बहुत सारे लोगों के लिए ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके घर परिवार में किसी की शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो, तो पुनर दोहराता हूँ, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चिंतन चिंतन याद दिला दूं आपको, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन में शामिल होता है। आज के चिंतन के लिए आलेख था श्रीमती सरस्वती शर्मा जी का, और जो गीत हमने सुनवाया दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म पैगाम, 1959 की फिल्म थी, मन्ना डे की आवाज में आपने ये गीत सुना। चिंतन समाप्त होता है। चिंतन, चिंतन। कल भाई एक कार्यक्रम में मैं पहुंचा, सत्संग सुना अपने चिन्मयानंद बापू जी का, और भाई सत्संग में भी जितने लोग मिले सबने चिंतन का जिक्र किया। कहते हैं बरसों से सुनते आ रहे हैं और बहुत कहते हैं कि नियम से सुनते हैं। तो श्रीमती पुष्पा शुक्ला जी, थैंक यू वेरी मच, कई बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद बरसा भाई, मेरा तो मन करता है कि भाई आखिरी सांस तक चिंतन का प्रसारण चलता रहे और लोग जो है सुनते रहे, सराहते रहे और उसे अपने जीवन में उतारते रहे। SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch. State Bank of India UK याद दिला रहे भाई रेट बहुत अच्छा चल रहा है, आज का रेट सुनिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर गिविंग 130.05 रुपीज फॉर वन पाउंड। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
1: ट्रेवल हब
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Leica, Birmingham, we are coming September 1st. Leica Radio Birmingham.

कभी हम पर वो जान दिया करते थे जो हम कहते थे मान लिया करते थे, अब पास से अनजान बनकर गुजर जाते हैं जो कभी दूर से ही पहचान लिया करते थे।

0: अब उदास फिरते हो सर्द सर्द शामों में, वही इस तरह तो होता है इस तरह के कामों।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।

यादों का सिलसिला, वादों का सिलसिला, जब साथ छूटता है, दिल टूटता है तो दिल कराह उठता है। शायर लिखता है और प्रियतमा की आंखों में दिखता है एक चेहरा, एक सपना, एक कोई अपना जो बिछड़ गया है।

0: बोलो
1: बोलो बोलो, क्या ख्याल है भाई? इंटरनेशनल लिसनर्स डे के मौके पर हमें अंजू याद दिला रही है, रवि जी मैं भी बहुत लकी हूँ, मैंने भी अमीन सयारी साहब को इंटरव्यू किया था। कब किया था? और भाई अगर रिकॉर्डिंग है तो भेजो ना अंजू। मैंने तो यही लाइका गोल्ड नहीं सनराइज पर किया था, और उसके बाद सयानी साहब से संपर्क रहा लगातार। हमारे एक दोस्त हैं मुंबई में, उनके माध्यम से तो उनके बारे में समाचार मिलते रहते थे। अब वो दुनिया में नहीं है लेकिन हमारे दिलों में हैं जनाब अमीन सयानी। मुंबई में आपने आकाशवाणी पर उन्हें इंटरव्यू किया था। लकी यू आर अंजू, थैंक यू वेरी मच। और भाई हम अनिल सोनी वियाना में हमें सुन रहे हैं, हिना हमारे साथ जुड़ी हैं, कहती है राम राम शर्मा जी। थैंक यू हिना जी, आई लव दिस सॉन्ग। कौन से वाला? अच्छा वो वाला, हाँ हाँ वो आपके लिए ही बजाया था मैंने। जैस्मीन थैंक यू वेरी मच। पम्मी स्लो में चिंतन की प्रशंसा में लिख रहे हैं। और भाई आप विमल रायन जी, महेंद्र पटेल क्रोइडन में, भरत गंगाराम भाई सब। और आज जन्मदिन किसका है आप में से?
2: कह दो
3: दिल की बात, कह दो।
1: कहीं नहीं अभी
4: updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Rates अच्छे चल रहे हैं भाई, पैसे भिजवाने का मौका है। Let me tell you, currency rates from LemFi. एक पाउंड के बदले they are giving 130.6 Indian rupees, 376.69 Pakistani, 449.66 श्रीलंकन रुपए, 166.24 बांग्लादेशी टके, और अफगान अफगानी एक पाउंड के बदले वो दे रहे हैं 89.24.
4: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
5: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
4: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: सोने का भाव तो भाई जगाने वाला भाव हो रहा है। इसे 105.68 pounds per gram.
4: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
6: Like a gold.
7: Yeh hai
8: like a gold.
9: Apna gold, apna ke kareeb.
8: Aapka apna Utsav Plus ab hai Star Plus. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
10: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: Packed for the trip? Gifts? Passport?
13: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
12: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
13: Simzy?
12: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
14: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's S-I-M-Z-Y.com. T's and C's apply.

0: Mamster ਗੋਲਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. LYCA. This is Leica.
3: और भाई हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं हम हमारे मित्र एजाज भाई को, चेशम में मना रहे हैं, कल मनाएंगे कहते हैं, आज ही मना लो ना, कल फिर मना लेंगे। हाँ, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे इन एडवांस एजाज भाई। इसके अलावा वजीर लिख रहे हैं कि हमें आज का चिंतन बहुत पसंद आया, सलाम वालेकुम रवि भाई। वजीर भाई वालेकुम सलाम, सुनते रहिएगा चिंतन आपको बहुत भाया। वत्सला कहती चिंतन हमें आध्यात्मिकता और अंतरात्मा से जोड़ता है। थैंक यू रंजन, सो नाइस ऑफ यू, आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, वेम्बली में आप सुन रहे हैं। और कहते हैं नाइस टू सी यू यस्टरडे इन वेम्बली, ओके थैंक यू वेरी मच। हंसा वोरा जी वंडरफुल चिंतन, थैंक यू। और आंटी जी कहती हैं आप कई बार हमारे सवालों का जवाब जो है चिंतन में दे देते हैं, पर प्रोग्राम में अपने आप जवाब आ जाता है। बेल्जियम में प्रीति सुन रही, थैंक यू वेरी मच। आप सब के लिए बड़े प्यार से, दुलार से और सत्कार से ये गीत आ रहा है। प्यार छुपाए नहीं छुपता है, दबाए नहीं दबता है, ये तो सूरज की तरह आंखों में उगता है, चमकता है, रोशनी फैलाता है। प्यार करने वाला पता नहीं क्यों अकेले में अपने आप ही मुस्कुराता है, छुपाने की कोशिश करता है तो और ज्यादा नजर आता है।

0: और भाई मीना को भी याद आ गई कि आज उनके भतीजे का जन्मदिन है। ये है ऑस्ट्रिया में रॉकी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो मीना जी की ओर से और भाई उनकी माता जी नीरू की ओर से, उनके परिवार की ओर से, भाई दुनिया भर से, लंदन से, इंडिया से, पंजाब से और ऑस्ट्रिया में वियना से जितने जानने पहचानने वाले हैं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कह रहे हैं रॉकी को। हैव ए ग्रेट बर्थडे भाई।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India UK. आज अच्छा रेट दे रहे हैं और आपको याद दिला रहे हैं कि अगर इंडिया पैसे भेजना चाहते हैं तो इस अवसर का फायदा उठाइए। टुडेज रेट इज फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 130.05 रुपीस। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। TNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is like a gold.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
2: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
1: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
3: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
4: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
5: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
6: और बहन भाइयों, ये तो आपको पता ही है कि इस सप्ताह कौन है आर्टिस्ट ऑफ द वीक, वन एंड ओनली साहिर लुधियानवी। कई गीत भाई उनके बड़े सुपरहिट हुए, फिल्मों में और वैसे भी मुशायरों में छा जाते थे। साहिर लुधियानवी का अपना जीवन भी भाई ऐसा रहा कि एक लेखक तभी लेखक बनता है जब उसका आंसुओं से रिश्ता बनता है, वियोग होता है उसकी जिंदगी में।

0: आई
1: साहिर लुधियानवी।
0: दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी फिर क्यों आंख भर आई,
1: फिर क्यों आंख भर आई। थैंक यू वेरी मच। हमारी जो नैना है वो भी हमारे साथ साथ काम करती है गीतों को ढूंढने में और प्रोग्राम में शामिल करवाने में, उनका योगदान हम भूल नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच नैना, चाहो तो इस गीत को अपने नाम कर लो।
2: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
3: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरी वैली.net।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और बहनों भाइयों, अब एक सूचना आप तक पहुंचाना चाहते हैं भाई, वो तो याद दिलाते हैं, यूं कहिए कि एक तो सुनील ग्रोवर आ रहे हैं, आपको पता है सुनील ग्रोवर जो डॉक्टर मशहूर गुलाटी हैं कपिल शर्मा शो में, भाई बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। मैं तो साथ में ये भी याद दिलाता हूँ कि वो हरियाणा से हैं और पंजाबी और दूसरी भाषाएँ बहुत अच्छी बोलते हैं। वेम्बली अरीना में उनका शो है 29 अक्टूबर को और लेस्टर में है 31 अक्टूबर को। तो भाई टिकट्स के लिए नोट कीजिए, टिकट्स एट AXS, इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर्स, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। इसके अलावा कविता कृष्णमूर्ति जी भी आ रही हैं और कविता कृष्णमूर्ति भाई वो परफॉर्म कर रही हैं कहाँ पर, लाइव एट द रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन संडे द 1st नवंबर, ब्रॉट टू यू बाई सनातन इवेंट्स एज ए दिवाली स्पेशल। टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क। और मैं इनकी बात बताऊं भाई, कविता जी के साथ जो है कई बार स्टेज साझी की, एक बार स्टेज के पीछे वैसे गीतों पर चर्चा हो रही थी, मैंने कहा कि एक गीत आपका बहुत अच्छा लगता है, बहुत बजाया है मैंने। कहती है कौन सा, मैंने कहा कि ये वाला। कहती ये कौन सा गीत है, अपना गाया गीत याद नहीं आ रहा है कविता जी आपको भाई? 2-3

0: बार याद दिलाया, फिर थोड़ा गुनगुना के सुना, हाँ हाँ हाँ जरा सोचिए भरा भाइयों कौन सा था वो गीत, सुनवा दूं।
1: लाइका गोल्ड।
2: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: This was the song.

0: What a song, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में ये गीत लिया गया था फिल्म जीत से।
1: Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: South All Travel फिर याद दिला रहे हैं भाई। South All Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact South All Travel today on 0208-574-8410. South All Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: लाइका गोल्ड
0: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: विजिट travelhubworld.com
4: भजन फिनोमिनन अब लंदन में धमाके करने आ रहा है बैकस्टेज सिबलिंग्स परफॉर्म लाइव फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द यूके जॉइन द पायनियर्स ऑफ भजन जैमिंग ऑन फ्राइडे द 9th एंड सैटरडे द 10th ऑफ अक्टूबर एट SKLPC नॉर्थोल्ट एक शाम सोलफुल म्यूजिक डिवोशन और एनर्जी के नाम टिकट्स बुक कीजिए ऑन skLPC.com/BSS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क

0: Basmati rice.
1: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
2: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल. At all protected.

0: Mabster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com.

0: याद करना और याद आना। भाई हमारे गुरुदेव गांजा साहब, आपने बहुत तारीफ लिख दी है कार्यक्रमों की, चिंतन की और बातों की। जी चाहता है आपको चाय पिलाई जाए। नहीं, मेरा मतलब है कि आप जाइए और किसी अच्छी सी शॉप पे, महंगी सी शॉप पे चाय या कॉफ़ी ऑर्डर करके पी लीजिए। मेरी तरफ से मतलब मेरा नाम ले देना, बाकी पे तो आप नहीं करना है।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Let me tell you the rates, bhai. LemFi वालों का ये जो रेट है, एक पाउंड के बदले इन इंडियन करेंसी दे आर गिविंग 130.52 रुपीस, पाकिस्तानी 378.59, श्रीलंकन 450.22, बांग्लादेशी टके 166.72 और अफगानी 89.27.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: LIKA Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: सराफा बाजार में सोने का भाव, द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट द रेट ऑफ 105.59 पाउंड्स पर ग्राम।
2: गोल्ड रेट वाज स्पॉन्सर्ड बाय पूजा स्वीट्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वेजिटेरियन फूड सप्लायर्स। पूजा स्वीट्स.com और विजिटर्स एट ईस्टहैम, हाउंसलो और क्राउली।

मुबारक देने आए थे, मुबारक दे के जाते हैं, मिला है जो उसे सीने में लेके जाते हैं। बाली भाई का इंतजार कीजिए और रवि शर्मा को अगली मुलाकात तक के लिए इजाजत।

0: Anna Gold, afternoon to you with those two beautiful songs that you've just been listening to. And what shall I say? Yes, today it happens to be week number 34, 232nd day of 2026 and 133 days left, 408th a day of Laika Radio Midlands and 124. मैं बाली ब्रह्मभट आपका साथ निभाऊंगा ऑन लाइका गोल्ड्स गोल्ड आफ्टरनून्स स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन एंड सैंडी शाह फॉलोज मी एट 4 PM ऑन ड्राइव टाइम एंड राज बत्तन ऑन लाइका रेडियो मिडलैंड्स सो साथ निभाइएगा इन द सेकेंड आवर वी गॉट टू ट्रिब्यूट्स इन वन आवर कैन यू बिलीव दैट देयर वन इज अ कंपोजर एंड वन इज अ चाइल्ड स्टार who then became an adult star, Kaun Thi Wo? Yes, no, not Baby Nanda. Guess karte jaiyega. Hum zarur aapke samaksh pesh karenge two tributes in the second hour. But then in the first hour, we are enjoying some of these peppy songs. Aaj aisa din hai ke barish bhi ho rahi hai aur kuch log khush hain. कहते हैं कि चलो गर्मी इज ओवर लेकिन वी डोंट नो हाउ द वीकेंड्स गोना बी अगेन इट कुड बी अनदर सनी स्पेल सो इंतजार करते जाइएगा और लुत्फ उठाते जाइएगा विद लाइका गोल्ड
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can fetch you up to 130.05 Indian rupees. That's right, I'll repeat the rate there. 130.2. That's what it has changed to just now when I watched it again. 130.2 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: जैमिन गोल्ड आफ्टरनून्स विद बाली ब्रह्मभट्ट जैमिन फूड्स बिल्कुल घर जैसा स्वाद और घर जैसी ही बात अवेलेबल एट एशियन स्टोर्स नियर यू
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: What food mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
2: To aaiye Godfather & Co. Vivek House Bar & Kitchen.
1: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak. Fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
2: Friends, family ya special night out. Isi यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटफोर्ड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
3: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से. स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा.
4: छोटी छोटी

0: भक्ति ना सुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग 5th September Wembley, 6th September Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner Laika Radio Network.
1: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
3: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
4: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
5: Chai break हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
6: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
5: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
6: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
5: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
6: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com.

0: Mamster Pani Puri or Pani Puri Ka Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 02087677627
3: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: मेकिंग समर फील बेटर. दिस इज लाइका गोल्ड.

0: आपका वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
1: गोल्ड आफ्टरनून
2: प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाई जेमिन फूड्स, द ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया। दाल भात, पाव भाजी, बिरयानी, बस पेट संभाल जो क्योंकि क्रेविंग्स बढ़ने वाली है।
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
5: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
4: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ। 29th August हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th August वुडमेंस्टर्न स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
7: Dad,
8: what's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
9: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
10: Nigel Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Nigel Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Nigel Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Nigel Couture.
11: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel, prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
14: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी।
15: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
16: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
17: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg, only £7.99, exclusively at quality food stores.
18: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
19: Across London, this is Ballybrambat on Like a Gold.
4: Like a Gold, London's number one Asian retro music station.

कितना मजा आता है ये आवाज सुनकर, शारदा सूरज फिल्म का 1966। ये गाना कभी ना कभी तो आता ही रहता है लाइक अ गोल्ड पे। बॉम्बे 405 माइल्स 1980 का गाना, आशा भोसले और रफी साहब।

और इसका संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने और लिरिक्स लिखी इंदिवर जी ने. फिल्म बॉम्बे 405 miles. कोई रोको ना राजेश रोशन को नेक्स्ट गाने में, और योगेश जी ने लिरिक्स लिखी.

मुछो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती, अरे लांबो डगलो मुछो बांकड़ी सिरे पाघड़ी राती, अरे बोल बोल तो थोड़ी थोड़ी खेल सभी लो गुजराती, अरे तन छोटू पण मन मोटू, अरे तन छोटू पण मन मोटू छे खमीर बनती जाती, अरे भले लाग तो घोड़ो तू खेल सभी लो गुजराती, भाई खेल सभी लो गुजराती, भाई खेल।

0: Enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
0: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
1: high appreciation
0: in Dubai.
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
3: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
2: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.

0: Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साफो ट्रेवल Auto protected.
3: Stardom Media proudly presents Janmashtami Bhajan Jamming with the soulful Nandlal Changa.
4: कृष्णना जन्मनो आनंद उत्सव एक रात एक अनुभव
3: 5th September at Wembley 6th September at Crawley Tickets only £25 For tickets booking visit Eventbrite, Skiddle, Videorama or stardommedialtd.com
4: Stall and sponsorship mate call 07940924667 Exclusive radio partner Leica Radio Network
5: 07300998823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
6: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी सप्लाई।
7: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
8: बीकानेर वाला परंपरा भी
9: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फोर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
10: डाउनलोड द Leica रेडियो मोबाइल ऐप, लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज अक्रॉस लंदन। दिस इज Bally Brambat on Leica Gold।

0: ले राजा।
1: जी हाँ, राजेश खन्ना के साथ उनकी बहन बनी थी, none other than नाज। यस, दैट वॉज नाज, कुमारी नाज। एंड देन आगे शी गॉट मैरिड एंड हस्बैंड एंड वाइफ एक्टेड इन अ फिल्म मेरा घर मेरे बच्चे। ऑन स्क्रीन बेबी नाज एंड सुभी राज, हस्बैंड वाइफ इन रियल लाइफ। सुनिएगा गाना। मेरा घर मेरे बच्चे 1960 की फिल्म, गा रहे हैं मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर। ब्यूटिफुल सॉन्ग आई मस्ट से। म्यूजिक डायरेक्टर सरदार मल्लिक, हसरत जयपुरी की लिरिक्स।

और दूसरा गाना जो था दैट इज दिस वन। इसमें डेजी ईरानी थी एंड सुदेश कुमार स्टार्ट्स द सॉन्ग सिंगिंग टू हर। सुलोचना जी भी थी एंड देन बाद में चांद के ऊपर बैठी है नन अदर देन नाज़।

0: What a combo, eh? First of all, she sang with Kumar Sanu, and then with Yesudas. These are the two different qualities of Lata Mangeshkar. Dekha jaye to one of the greatest singers ever in the world. I mean, you can actually see that no other singer could match Lata Mangeshkar's pitch perfection. You know, she sang in three octaves with ease and pitch perfection. Three octaves. मतलब कि आप हारमोनियम में देखो तो लोअर स्केल होता है, मीडियम स्केल होता है और ऊपर का स्केल होता है. आई डोंट वॉन्ट टू गेट टू टेक्निकल, क्योंकि तार सप्तक होता है और मध्यम होता है और खरज होता है. लेकिन आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू के तीन डिफरेंट रोज ऑफ सारेगामापादानीसा एंड सारेगामापादानीसा, लो, मीडियम एंड हाई स्केल. तो ये तीनों स्केल में लता जी वॉज पिच परफेक्ट. आई मीन वॉट मोर कैन आई से. जैसे कि गाने हम उनके देखें तो तुझे देखा तो ये जाना सनम, फिर होठों में ऐसी बात, ज्वेल थीफ का गाना, फिर आज फिर जीने की तमन्ना है, ऑफ कोर्स एवरीबडी नोज द ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ गाइड, एंड देन पिया तो से नैना लागे रे, एंड देन कोरा कागज़ था ये मन मेरा. मतलब कोरा कागज़ में भी कुछ अच्छे गाने थे, एंड मेरा साया साथ होगा, पिक्चराइज्ड ऑन साधना ऑफ कोर्स, आपकी नज़रों ने समझा फिल्म अनपढ़ का गाना, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन. इतना लंबा लिस्ट है लता जी का, लेकिन कुछ कुछ गाने जो मैं मेंशन कर रहा हूँ तो वो तो पब्लिक का फेवरेट है ही. एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक यू नो, कुछ लता जी कुछ एक दो दिनों से बहुत याद आ रही थी. आई डोंट नो व्हाई, बट कभी भी बैठता था तो लता जी के गाने कुछ सुनने को मन कर रहा था तो मैं सुनने लगा, तो ये दो गाने आज आपको मैंने सुना दिए. आई होप यू एंजॉयड इट योरसेल्फ्स. एंड नॉट ओनली दैट, आवर आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैपेंस टू बी नन अदर देन यू बीन एंजॉयिंग हिम ऑल वीक, साहिर लुधियानवी. मैंने एक गाना चुना है मुकेश जी और आशा भोसले जी जो गा रहे हैं, तो सुनते रहिएगा. मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स, अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव, DAB, एलेक्सा, गूगल होम एंड लाइक अ गोल्ड .com एंड ऑन लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स. इट्स 408th डे ऑफ लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स एंड बर्मिंगम. वी आर कमिंग सून एंड लुक फॉरवर्ड to our new radio station, which is Ghazals radio station. हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो सेटिंग अप में, और एकदम आपकी फेवरेट गजलें सुनते रहिएगा उस रेडियो स्टेशन पे. यहाँ भी लाइका गोल्ड पे भी मैं तो सुनाता ही रहूँगा टाइम टाइम पे, लेकिन ये स्टेशन ने मतलब बहुत अच्छा काम करना है. लेकिन इट इज़ दी ओनली Ghazal radio station, you can say, that is set up by Laika. That's the brainchild of our CEO Raj Patan, jinhone bahut sahara humko diya hai. And Khayam ji aur Sahir Ludhianvi kya combination, will come next song. Sunte rahiyega Bali Brahmbhatt. Show sponsored by Jaimin, of course.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 130.05 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: From the first time they lose a
3: baby tooth, look, Mum,
2: to the countless times they forget to mention their
4: ingredients for food tech tomorrow,
2: to the last time you hear that school was
5: yeah, all right.
2: Kids grow up fast. Luckily at Tesco, we have back-to-school uniform that grows with them, including everything they need like trousers and skirts with adjustable hems and waists. So you can focus less on the cost and more on all this. Tesco. Every little helps. Available in the majority of larger stores and online.
5: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
6: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
7: हॉन्स्लो अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
8: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद
9: भी. बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो, TW3 1QT. कॉल करे 07487-687-885.
10: ड्रीमिंग ऑफ पैराडाइज?
11: डिस्कवर द इंडियन ओशन विद स्काईलॉर्ड क्रूज एंड हॉलीडेज. बुक एक्सक्लूसिव एमिरेट्स हॉलीडे ऑफर्स टू मॉरिशस, The Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
12: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
11: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
12: At all protected.
13: What food mein dinner plans? Thoda classy, thoda desi.
14: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
13: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
14: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House, Watford. Call 01923-227274. Book your table today.
15: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana.
16: Disha Basmati Rice. Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
17: पल भर के लिए
18: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज. इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा. गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25. बुक टिकट्स एट heroartcenter.com. बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02037737161. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक रेडियो नेटवर्क.
19: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्ट अप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा. भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग. 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
20: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
21: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
20: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
21: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
20: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
21: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
22: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th of September एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
23: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
24: Like a gold. लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ गोल्ड और ऑनलाइन सुनो लाइक अ गोल्ड .com पे.
0: Greatest of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Jemin Foods sponsors Gold Afternoons from Dal Bhat, Pav Bhaji and Biryani to Namkeen, Khakra, Chikki, Potato Chips, Mango Pulp, Pani Puri and Sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट TravelHubWorld.com.
3: London, Jay's Entertainment presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shivdasani. Playback singer Aman Trikha. Aur soulful singer Mayuri Patalia live Harrow mein. Saturday, 3rd October, 7 PM, Harrow Arts Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Arts Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.

0: becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
0: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
1: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
0: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
1: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
0: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
2: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
2: high appreciation
3: in Dubai.
4: नोक झोंक, सीक्रेट्स, अनलिमिटेड लड़ाई और अनलिमिटेड बातें, दुनिया के सबसे अनोखे इस भाई बहन के रिश्ते को सालों साल मीठा बनाता राखी का त्योहार। सेलिब्रेट करें अपनों के साथ और साथ साथ जैमिन फूड्स की एथनिक इंडियन वैरायटी भी, जहां है खाखरा, नमकीन, भाखरी, चिक्की, सोन पापड़ी, पिकल्स और बहुत कुछ।
5: अवेलेबल एट एथनिक ग्रोसरी स्टोर नियर यू। जैमिन फूड्स विशेस यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन।
6: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीएनसी सप्लाई।
7: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 02087677627।
8: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
9: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
10: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good track, brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Dad.
1: What's wrong, beta?
0: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
1: I will run down to the money exchange now.
0: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the YONO SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
1: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the YONO SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
0: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
2: September महीना में हसन और डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
3: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
4: ए तमे स्त्री ओमने ऐसे रहे पुरुषों नाम खोटा होगो वालो बंद करो।
2: कॉमेडी किंग निमेशा अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लेने आवी रहे छे। सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जान मा। हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 0793153427 0। नाटक नु नाम याद रखो
5: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
6: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
7: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
8: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
7: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
9: 0730098823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730098823।
10: Like a Goal, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Like a Goal और online सुनो likeagoal.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Laika Gold. Laika Gold. ये है Laika Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
1: विजिट travelhubworld.com.
2: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट. दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
1: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
3: अनुज चोपड़ा फाउंडेशन प्राउडली प्रेजेंट्स एन इवनिंग ऑफ एलिगेंस विद द लेजेंडरी अनूप चलोटा.
4: जाम चलने लगे, दिल मचलने लगे.
3: On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Hosted by Anisa Nasir. तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners, Laika Radio Network.
1: What food में dinner plans? थोड़ा classy, थोड़ा desi.
0: तो आइए Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
1: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala, से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स. हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
0: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वटवुड. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
3: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
5: तुम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
3: स्वीट मेमोरीज of Mukesh and Lata with Sangeeta Melekar aur Mukhtar Shah live band ke saath. 29th August Hedge and High School Harrow. 30th August Woodmanstone School South London. Dinner from 5 PM. Show starts at 7 PM. For tickets and more information call Deepa on 07947561947.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: Ilford, ab असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
9: बीकानेर वाला परंपरा भी
10: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, एल्फोर्ड, IG26HA. कॉल 07555560615.

0: And here we are, third and final hour of Drive with that wonderful back-to-back there. Really enjoyed that, actually. Thank you for all your messages, as always. So let's get into this third hour ASAP. Let's do it now. As you know, the artist of the week is, of course, Sahir Ludhianvi. And where do you start? Where do you stop? But I've got another two wonderful songs. Today, they are both solos by Mohammed Rafi Saab. And you're going to decide which one you think is the better of the two, which one you're going to vote for. So the first one is from the movie Neel Kamal, Babul Ki Duaen Leti Ja. And the second song is from the film Dastan, Na Tu Zameen Ke Liye. Yeah. So they're the two that are going up neck and neck with each other. And you're the one who's going to decide which one will obviously get played. Once we count up the votes. So once again, the first song is Babul Ki Duaen Leti Ja from the movie Neel Kamal, Ya Na Tu Zameen Ke Liye from the film Dastan. Which one will get your vote?
1: WhatsApp message Like a Gold now on 0744 23 23 23. Gold Drive with Sandy Shah. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 going to get you 130.05 Indian rupees. Don't forget you can exchange in branch, online, or simply use the SBI Yono mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: So we've got a few messages coming in, playing a real wonderful retro Mukesh song, one that I really do like. So before we get there, once again, just to give you a quick reminder of today's Ye Yavo, and the two songs are either Babul Ki Duaen Leti Ja, Rafi Saab from the movie Neel Kamal, or you're going to go for Na Tu Zameen Ke Liye, Rafi Saab from the movie Dastan.
2: Ye hai
3: Laika Gold.
1: Laika Gold, traffic and travel.
4: This is Martin with your travel. Delays on the M4 this evening onto the elevated section eastbound. You head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. It's still slowing on the A312 the partway southbound before you get to the M4 Junction 3. A4020 Uxbridge Road, heavy between the partway and Southall Park, and it's slowing on the A312 Church Road and Mandeville Road from the White Hart roundabout to the Target roundabout, and then on to Northolt Station. Queuing on the A406 North Circular Road in both directions as you head towards the Hangar Line to Airitary, A40 Western Avenue heavy westbound before Gypsy Corner, and the A3 West Hill busy westbound around the A205 South Circular coming from the one-way system.
3: Yeah.
2: Like a gold.
3: Like a gold.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
7: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज. इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर, फीचरिंग फहद यफ अकंपनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा. गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए. संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर. टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25. बुक टिकट्स एट heroartcenter.com. बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203737361. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क.
8: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208922334. 24 आवर लाइन महाराजा टूर्स के साथ नेपाल और भूटान की आध्यात्मिक यात्रा पर चलिए। अपना सुकून ढूंढिए हिमालय की खूबसूरत वादियों, प्राचीन मोनेस्ट्रीज, रंग बिरंगी संस्कृति और यादगार अनुभवों का मजा लीजिए। सुकून, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम आपका इंतजार कर रहा है। आज ही महाराजा टूर्स के साथ अपनी नेपाल और भूटान यात्रा बुक कीजिए। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
9: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
10: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
9: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
10: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
9: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
10: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
9: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
10: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.

0: travelhubworld.com flights and holidays humse sasta kahi nahi mil sakta call travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com
1: travelhub best service with unbeatable price
0: at all protected
1: visit travelhubworld.com
2: Dad,
3: what's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, balle balle! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: Location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal Couture.
8: 073-00-99-8823 नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823
9: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
10: हॉन्सलो अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास
11: बीकानेर वाला परंपरा भी
12: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्सलो TW3 1QT कॉल करें 07487-687-885
13: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com टीजन सी सप्लाई
14: कैरेटिनो बेटर घी द हेल्थियर लो प्राइस कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर घी अल्टरनेटिव कैरेटिनो बेटर घी अवेलेबल In Tesco's, Asda, Morrison's, and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
15: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
17: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
18: This superhit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. The M4 heavy onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. It's slowing on the A312 the partway southbound before you get to the M4 Junction 3. A4020 Uxbridge Road, heavy between the partway and Southall Park. Slow on the A312 Church Road and Mandeville Road from the White Hart roundabout to the Target roundabout and then on to Northolt Station. Queuing in both directions on the A406 North Circular Road as you head towards the Hanger Lane Gyratory to the Tube, and minor delays on the Central Line, that's due to a points failure at White City, and also minor delays on the Hammersmith and City Line, and that's down to cancellations. That's your latest traffic and travel.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments, and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
4: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
5: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
4: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
5: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
6: One performer,
7: countless personalities,
6: a whole universe of entertainment.
7: Sunil Grover, live UK tour 2026.
6: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
7: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises.
6: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
6: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network. Work.
8: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
6: साउथहॉल ट्रेवल. Atoll protected.
9: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना. दिशा बासमती राइस.
10: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड. अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरीज, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड. दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस.
11: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड. मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट मेरा बॉयलर.com.

0: ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
2: Next, Ashwini, in for Anisa Nasir on The Evening Show on Leica Gold.
3: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे
4: ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स

0: भाई जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। आप और हम साथ में मनाएंगे थ्रिलिंग थर्सडे। एंड इस थ्रिलिंग थर्सडे के लिए क्या आप सब हैं तैयार? इस पहले आवर का आगाज हमने किया था दो बड़े ही बेहतरीन गीतों के साथ में। आवाज दो हमको फ्रॉम दुश्मन फिल्म एंड सेकंड वर्जन वॉज फ्रॉम तू इस तरह से। ब्यूटीफुल ट्रैक ना, दोनों ही बड़े पसंदीदा है। एक्चुअली पूरे ही शो में जो गीत आप सुनेंगे सारे ही मेरी पसंद की गीत हैं। एंड अलग अलग आवर में हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पूछे आप सबसे कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? थ्रिलिंग थर्सडे के लिए तैयार हो गए हैं ना? देखो आ गया थर्सडे। क्या कहा था मैंने, ट्यूसडे आफ्टरनून के बाद में समय इतना जल्दी जाता है कि हम ही सोचते हैं कि अच्छा इतना जल्दी टाइम कैसे निकल गया, है ना? तो कोई सवाल पूछने वाली है अश्विनी? बिल्कुल पूछने वाली, जरा मजेदार सा सवाल होगा। एंड लाइफ थियरी, यस इट इज देयर। घर घर की कहानी में कोई सवाल? हाँ बिल्कुल है। ओके, सो अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है। सारे हमारे प्यारे लिसनर्स अपनी अपनी अटेंडेंस यहाँ लगवा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो सभी पे होगा, ये सवाल सभी पे लागू होगा, ठीक है? मुझे एक ऐसा सॉन्ग बताओ, एक ऐसा गीत बताओ जिस पे आप बिना शर्माए डांस करोगे। फॉर मी इट इज़ झिंगाट, यू नो, हिंदी और मराठी। आई एम मराठी गर्ल, तो मराठी में भी जो झिंगाट है उसका भी म्यूज़िक अमेजिंग है, और हिंदी में भी जो झिंगाट है उसका भी म्यूज़िक अमेजिंग है, है ना? सो फॉर मी इट इज़ झिंगाट। आपका वो कौन सा ऐसा गीत है जो आएगा ना तो पैर तो थिरकेंगे एंड यू लाइक आई एम गोइंग टू डांस यार, पक्का बताओ जल्दी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130 इंडियन रुपी। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: This is Ash Winnie on Like a Gold.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
2: 07300998823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 7:32, इट्स 7:32. आप सभी से मैंने सवाल पूछा है कि भाई कौन सा वो एक गीत है जहां पे बिना शर्माए आप मतलब डांस ऐसे शुरू हो जाएंगे कि कोई फिक्र नहीं कि आसपास कौन है. फैंटास्टिक एंड थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस जो अपने फेवरेट गाने के बारे में मुझे बता रहे हैं बिंदास एकदम कि भाई बस ये गाना शुरू हुआ ना तो हमारे पैर तो रुकने ही नहीं है. फॉर मी इट्स जिंगट अगेन, जिन्होंने अगर अभी अभी ट्यून इन किया है तो फैंटास्टिक ट्रैक्स. बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग एराए के गीत बताए हैं, सो इट्स रियली नाइस, विल टॉक अबाउट दैट. लेकिन अब ज़रा बात हो जाए आज की लाइफ थियरी के बारे में. तो मैं आज आपके लिए कौन सी लाइफ थियरी लेके आई हूँ. आज की लाइफ थियरी का नाम है द शैनल बैग थियरी. शैनल के बैग्स जो हैं ये एक बड़ा सा ब्रांड है व्हेन इट कम्स टू द हैंड बैग्स, पर्सेस जो होती हैं, हैंड बैग्स जो होती हैं, उसका ये एक बड़ा ही वेल नोन और बड़ा ही महंगा ब्रांड है. तो भाई जो वहाँ पे डिस्प्ले के लिए जो शैनल के बैग रखी होती है वहाँ से आप देखेंगे कभी भी कहीं किसी आउटलेट गए और वहाँ पे अगर आपको शैनल का कोई शोरूम दिखता है तो कई लोग जो हैं बाहर से रुक के शैनल के वो बैग्स देखते हैं. उसमें से कुछ लोग अंदर जाते हैं, रेट्स देखते हैं, पूछते हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ले आते हैं और नहीं अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बस उसे देख के निकल जाते हैं. अब जो अफोर्ड कर सकते हैं क्या बात है, और जो नहीं कर सकते वो सपने संजोते कि कभी तो ये बैग मैंने लेनी है ना, मैं अफोर्ड करूँगी इस बैग को. और कई लोग यार नहीं दो यार ये कहाँ हमारे बस की बात नहीं है, पर चलो देख ली हमने कि शैनल बैग क्या होती है. अब आ जाए मेन मुद्दे पे कि हमारी ज़िंदगी में इसका क्या लेना देना. ऐसा है कि आप जिस टाइप की भी पर्सनालिटी हैं, चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी आप हैं, सभी के बस की बात आप नहीं हैं. तो अगर आपको ज़िंदगी में कोई इग्नोर करता है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, जाने भी दो यारो, है ना, दैट कैन बी, उन्हें जाने दो, वो आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आप अपने आप में एक ब्रांड है. और हर कोई जैसे शैनल के बैग अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ चुनिंदा गिने चुने लोग ही उसे अफोर्ड कर सकते हैं. वैसे ही आप भी हैं, आप भी बड़े स्पेशल हैं अपने आप में. हर कोई आपको समझ नहीं पाएगा, हर कोई आपके करीब नहीं होगा. एंड यू नो इन अ वे अच्छा है कि बहुत सारे लोगों से अच्छा ना गिन चुन के एक दो फ्रेंड्स अगर आपके पास हैं अच्छा है. और कभी कभी ऐसा मुकाम आता है कि इंसान अकेला पड़ जाता है कि कोई भी मेरी ज़िंदगी में नहीं है, ऐसा उसे लगने लगता है. तब यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है क्योंकि वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है. और कई बार ऐसे होता है कि आपके ही जहन के, आपके ही दिल के बहुत करीब ऐसे लोग होते हैं और अचानक से वो दूर होने लगते हैं. मुझे ना हमेशा इस बात को लेके ताज्जुब लगता है कि हम इंसान देखो ना कैसे हैं कि किसी पे मर मिटने के लिए

0: तैयार होते हैं, कभी कभी तो उसी इंसान को जितना हम इतना चाहते हैं, एक क्षण, एक ऐसा एक सेकेंड ऐसा आ जाता है, एक मिनट ऐसा आ जाता है, एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग, कि हम उस इंसान से नफरत करने लगते हैं, है ना, कैसे होते हैं हम। सो एनीवेज, शैनल बैग वाली थ्योरी यही है, अगर लोग आपको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो वो आपके करीब नहीं आएंगे, लेकिन जो आपके लिए सही इंसान है, जो आपके लिए बना है, वो आप तक पहुंच ही जाएगा। तो अपने आप को बिल्कुल भी कम मत समझिए, एंड अपने आप की कीमत अपने आप की नज़रों में बिल्कुल बिल्कुल ऊंचे लेवल पे रखिए। खूब प्यार करिए अपने आप से, आप भी एक बड़े ब्रांड हैं। सोचते हैं ना आप बड़े ब्रांड हैं या नहीं, मुझे मत बताइए, ये तो आपको ही आंसर करना है। कैसी लगी आज की थ्योरी ज़रूर बताइएगा, एंड अब चलते हैं अगले गीत की तरफ।
1: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स, द इवनिंग शो विद अश्विनी। Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Leica Gold and Leica Radio Midlands from 1 PM to 4 PM. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie on Leica Gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: There yet? Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
5: Relax, I've booked the Uber already.
4: How? My roaming isn't even working yet.
5: I switched to Simsy before we left London.
4: Simsy? Since when are you the tech expert?
5: Since I decided I want a stress-free holiday.
6: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
7: T's and C's apply.
8: Location, location, location. Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel, prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: सप्टेम्बर મહિનામાં હાસ્યનો ડબલ ધમાકો ફરી આવી રહ્યો છે.
11: તમે બધા પુરુષો તો લગ્ને કુવારા હો છો.
12: એ તમે સ્ત્રીઓ અમને છે ને પુરુષોના ખોટા ઓબવવાનું બંધ કરો.
10: કોમેડી કિંગ નિમેશ શાહ અને ક્વીન ઓફ કોમેડી મલ્લિકા શાહ લઈને આવી રહ્યા છે સુપર હિટ ગુજરાતી નાટક હાલો પટેલ ભાઈની જાનમાં. હવે રાઇસલી, પોટર્સમાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટનમાં. ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 0793153427070. નાટકનું નામ યાદ રાખજો.
13: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
14: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
13: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
14: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
10: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
15: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी.
16: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB. कॉल 07795181001.
17: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest Quality Food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99. Exclusively at Quality Food stores.
18: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208767627।

0: सरप्लस अब है स्टॉप लॉस।
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: मेकिंग समर फील बेटर ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क. अश्विनी ब्राइटनिंग अप योर वीक नाइट्स.

0: बारात,
1: यादों की बारात।
2: ये है
0: लाइका गोल्ड।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130.44 इंडियन रुपी, 378.13 पाकिस्तानी रुपी, 449.77 श्रीलंकन रुपी, 166.55 बांग्लादेशी टाका, 89.26 अफगान अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर्स, 176.36 केनियन शिलिंग, 63.54
3: मॉरिशियन रुपी। Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LAIKA Gold.
3: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £106.83 per gram.
3: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। तो इट्स 49 मिनट्स पास्ट 7, 20th ऑफ अगस्त, थ्रिलिंग थर्सडे मना रहे हैं आप और हम यहां पे साथ में। मैंने आप सबसे सवाल पूछा कि भाई आप लोग कौन से गाने पे डांस करते हैं बिंदास होके एकदम से, तो सभी ने नहीं कहूँगी, कुछ लोगों ने अभी भी मुझे आंसर नहीं दिया। ऐसे नहीं होता है, सवाल जवाब है ना, देना चाहिए ना आंसर सबने। सो व्हाट डज एक्चुअली डांसिंग डस टू यू? तो डांसिंग एक ऐसा मैजिक बटन है आपकी बॉडी और आपके माइंड के लिए, जहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक आप पूरे के पूरे एकदम जो है ना, हम लोग कैसे साइकिल की ऑयलिंग करते हैं, मशीन्स की ऑयलिंग करते हैं, है ना, वैसे हमारे शरीर का हो जाता है कि आपका इट पम्प्स योर ब्लड एंड देन आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है, आपके ब्रेन की एक्टिविटीज बढ़ती हैं। जिनको एज नहीं होना ना जल्दी, आप डांस किया करो, है ना, इट इम्प्रूव्स शार्प थिंकिंग, साथ में ऑब्वियसली फुल बॉडी टोन हो रही है। देखो मैंने क्या कहा था, फिटनेस, स्ट्रॉन्गर बोन्स एंड आपके जॉइंट्स भी मजबूत होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, उठो डांस करो, अभी ऐसे गाने लगने वाले हैं, अभी आगे के 2 घंटे और हैं, वो आप सुन के कहोगे आ उफ क्या बात है। अगले आवर में घर घर की कहानी एंड कुछ इंटरेस्टिंग जरूर बात करेंगे। सो लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर इज साथी फिल्म से सुना रही हूँ आप सभी को ये गीत, सुमन कल्याणपुर एंड मुकेश जी की आवाज़ में। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर।
3: This is Ashwini on Like a Gold.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कह

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: We're coming
1: UK Money Talk.
0: September 1st.
1: Send money to India
0: like
1: with progressive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
2: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130 इंडियन रुपीस. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई योनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
3: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज एंड सीज अप्लाई.
2: Welcome. This is the second hour of the evening show with Ashwini. इस आवर का आगाज हमने किया था दीवाना फिल्म से, ये ऐसी दीवानगी अलका याग्निक एंड विनोद राठौर की आवाज में. उसके बाद में ओए होए सिलसिला फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत लता मंगेशकर अमिताभ बच्चन की आवाज़ में. नेक्स्ट ट्रैक आप लोग ओए होए करने वाले हो, जैसे कि ये पहले दो गीत आपने सुने और कहा क्या बात है. अच्छा, तो घर घर की कहानी में आज मेरा सवाल आप सबसे, हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जो फ्रिज जाके खोल के देखता है या देखती है कि इसमें खाने लायक क्या होगा. एंड दिस हैपेंस कि वो हर दो तीन घंटे में आके ऐवें चेक कर लेंगे कि पता नहीं ऐसे ऐसे क्या ही बिलीफ सिस्टम होती है कि अपने आप कुछ प्रकट हो जाएगा फ्रिज में. मतलब मम्मी बनाते रहती है घर में, ये सब तो ठीक है, लेकिन फ्रिज में अपने आप कैसे चीज़ें प्रकट हो सकती है. पहली चीज़, क्या आपने बचपन में ये सब कुछ किया है? सेकेंड चीज़, आपके घर का वो एक मेंबर कौन है? उसके बारे में ज़रा बता दीजिए, पता चले कि ऐसा एक कौन मेंबर है जो आके फ्रिज ढूंढता है. फॉर मी, हाँ मेरे घर में भी है ऐसे मेंबर्स, लेकिन आपके घर के मेंबर्स के बारे में ज़रूर बताइएगा. आप थे तो भी बताइएगा. एंड इट्स थर्सडे, सो कुछ सुनना चाहेंगे मेरा लिखा हुआ? बताइएगा ज़रूर.

0: कितना खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गाइड फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत ना, उसके पहले किशोर कुमार की आवाज़ में कलाकार फिल्म से सुनाया था आप सभी को नीले नीले अंबर पे। मैं पूछ रही हूँ आप सबसे घर घर की कहानी इस सेगमेंट में कि आपके घर में ऐसा कौन है जो फ्रिज खोल के खड़ा हो जाता है, देखते हैं कि कुछ खाने मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सभी लोग सुना रहे हैं अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में और कुछ लोग तो बिल्कुल कन्फेशन मोड में हैं, आके कह रहे हैं कि अश्विनी हमारे घर में वो कोई और नहीं, बस मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ।
1: ये है Leica Gold. It's summer on the Leica Radio Network.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना आए, 8:36, इट्स 36 minutes past 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. जितने भी लेट लतीफ आए हैं ना अभी, आप लोग आके अभी हेलो कर रहे हैं, है ना, फाइन लगने वाला है आप सब पे अभी. ओके जी, थ्रिलिंग थर्सडे. सो सुना दूं आपने लिखी हुई एक कविता आप सभी को. ओके, तो इस पोयम का नाम है रिश्ते अब कम बनाने लगी. रिश्ते अब कम बनाने लगी हूँ मैं, भरोसा कुछ कम ही करने लगी हूँ मैं, दूसरों के लिए कुछ धुंधली सी होती जा रही हूँ मैं, सुकून अब खुद में ही पा रही हूँ मैं. दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है मुझे अब भी. जी हाँ, दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है मुझे अब भी. कभी कभी अकेला पाया था अपने आप को तब भी, अकेला रहना कुछ अच्छा लगने लगा है मुझे न जाने कब से. अकेला रहना कुछ अच्छा लगने लगा है मुझे न जाने कब से, अपने आप पे भरोसा करने लगी हूँ शायद तब से. क्या ढूंढ रही थी इतने सालों से ये पता ना चला. सभी हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं ना. क्या ढूंढ रही थी इतने सालों से ये पता ना चला, अपने आप में खोजा तो बहुत कुछ मिला. ओए होए क्या बात है, अपनी खूबसूरती, अपनी शौखियाँ, खुद के लिए दीवानगी. अपनी खूबसूरती, अपनी शौखियाँ, खुद के लिए दीवानगी, ये सब पाकर बे इंतहा खुश हो रही हूँ मैं. खुद में मदमस्त रहने लगी हूँ, अपने आप पर ज़्यादा भरोसा करने लगी हूँ मैं. शायद इसीलिए रिश्ते थोड़े कम बनाने लगी हूँ मैं. बताइए कैसी लगी है पोयम. वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट फेजेस इन लाइफ. लोगों के बीच, भीड़ के बीच रहने वाले हम, तन्हा रहना अच्छा लगने लगता है क्योंकि वो वैलिडेशन वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है. क्या ढूंढ रही थी, वो सारी चीज़ें इस कविता में मैंने लिखने की कोशिश की. कैसे यार ढूंढ रही थी कुछ तो, पर पता चला यार हम में ही कितनी सारी चीज़ें हैं, राइट. सो इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप से प्यार करें. दूसरे प्यार करेंगे, दूसरे कहेंगे, अच्छी चीज़ है, एडिशनल होगा सब कुछ. सो सेल्फ लव, दैट इज इम्पॉर्टेंट.
1: ये है लाइका गोल्ड.
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
0: इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. रवि शर्मा जी ने ये होस्ट किया है एपिसोड, और रवि शर्मा स्पीक्स टू मिस्टर प्रवीण पत्नी, ही इज द डायरेक्टर ऑफ मीना ज्वेलर्स, अबाउट हाउ गोल्ड प्राइसेज आर अफेक्टिंग कस्टमर्स एंड परचेसिंग डिसीजंस. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. दिस इज अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट travelhubworld.com.
4: Location, location, location. Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio, prime location,
4: high appreciation.
5: In Dubai.
6: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, देशा राइस का है जमाना.
2: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
7: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Lyco Radio Network.
8: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com
9: You know I fan shout at football matches
10: oh, wake up!
9: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish works in advertising too Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
11: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: चाय का गोट. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 130.46 इंडियन रुपी, 378.19 पाकिस्तानी रुपी, 449.9 श्रीलंकन रुपी, 166.58 बांग्लादेशी टाका, 89.27 अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर्स, 176.41 केनियन शिलिंग, 63.56 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at 106 pounds and 83 pence per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए एक बार आखिरी बार मिला लेते हैं घड़ियां फॉर दिस आवर. तो आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. रिश्तों पे जो मैंने अभी पोएम सुनाई, और ये रिश्ता था खुद से, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कहा कि अरे ऐसा लग रहा है तो हमारे ऊपर ही लिखी गई है पोएम. यस, वी ऑल गो थ्रू डिफरेंट फेजेस इन लाइफ एंड दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. खूबसूरत है, मज़ेदार है ना, बिल्कुल ग्राफ अप एंड डाउन चलते रहता है. जैसे कि आज सबकी हार्ट बीट्स अप एंड डाउन रही होगी, क्योंकि GCSE रिजल्ट थे आज बच्चों के, एंड ऑब्वियसली बच्चों ने जो मेहनत की है उन्हें वैसे मार्क्स मिले हैं, उस हिसाब से ज़िंदगी में वो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे. जब जब एक एक बड़ा पड़ाव हम लोग अपनी ज़िंदगी को पार करते हैं, तब तब लगता है कि कुछ नया है. बचपन में मुझे हमेशा लगता था कि बड़े होने में मज़ा है. एक्चुअली मज़ा है जब आप बड़े होते हो ना, लेकिन वो बड़ापन जो है जब आप बड़े होते हैं एज में, एक्सपीरियंस में, तो वो सारी चीज़ें ना एक अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है आप पे. मैंने रिसेंटली एक रील देखी थी जिसमें कहा गया वही जो मैं हमेशा महसूस करती हूँ, कि इंसान एज में कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अगर उनके पास में एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी के ऐसे हैं जहाँ पे कड़वापन उनमें भरा हुआ है, एंड इफ़ दे आर नॉट ओवरकमिंग इट, तो वो एज में सिर्फ बड़े हुए, एक्सपीरियंसेस में नहीं, ऐसा मुझे लगता है. सो एक 20 साल का लड़का या लड़की भी काफ़ी अच्छी और सुलझी हुई बात कर सकता है, एंड हो सकता है समबडी हु इज़ अबव 40 या 50 वो बचकानी बातें कर सकते हैं. वी ऑल आर ह्यूमंस, और सभी इसीलिए कहते हैं कि भाई अनुभवों के साथ में चेंज होना चाहिए. और हम लोग जब गीत सुनते हैं, गीत के माध्यम से कितनी सारी चीज़ें हमें समझने में मदद होती है. क्या ब्यूटीफुल लिरिक्स होते हैं, है ना. अगला जो मैं गीत सुनाने वाली हूँ, ये थोड़ा मस्ती भरा गीत होने वाला है आप सबके लिए. दीवाने हैं दीवानों को, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में जंजीर फिल्म से सुना रही हूँ आप सभी को ये गीत. कल होगा फैंटास्टिक फ्राइडे. जी हाँ, मैंने येस्टरडे आपको बताया था कि मैं फ्राइडे नहीं आ पाऊंगी, लेकिन आहा फिकर नॉट, आई एम गोइंग टू बी हियर इन द स्टूडियो टुमारो इवनिंग. फैंटास्टिक फ्राइडे मनाएंगे आप और हम साथ में. तो कल खाना पीना करके ज़रा तैयार रहिएगा कैलोरीज बर्न करने के लिए, क्योंकि आज ये अश्विनी बन जाती है डीजे अश्विनी. अभी है जी बिल्कुल एक घंटा अभी और बाकी है, लेकिन दिस इज़ द लास्ट ट्रैक ऑफ सेकेंड आवर. एंजॉय करिए जंजीर फिल्म का ये गीत.
0: Feel good classics all day. This is Leica Gold. This is Ash Winnie on Leica Gold.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत.
4: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
2: Dad.
5: What's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
7: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anup Chalota. On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
9: फोन 0208574 8410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com।
11: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207 132 1458 या ईमेल करें sales@lykameedia.co.uk।
12: द इवनिंग शो विद अश्विनी। लंदन, मिडलैंड्स, मैनचेस्टर। दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। तो 9:13 एंड दिस इज द थर्ड इन द आखिरी आवर ऑफ थ्रिलिंग थर्सडे। यस, इस आवर का आगाज हमने किया था दामिनी फिल्म से, उस फिल्म का एक गीत जब से तुमको देखा दैट, उसके बाद में फिर से जब से तुमको देखा, आपने देखा कि दो बार देखा गया है पहले दो गानों में। सो आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज़ में कालिया फिल्म से, बड़ा प्यारा लगता है ये वाला गीत मुझे, उसमें वो छोटे बच्चे जो बोलते हैं आई लव यू है ना, दैट्स क्यूट।
1: Ashwini, brightening up your weeknights. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 130 इंडियन रुपीस। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply.

0: चलिए मिलाने की घड़ियां एक बार देखते हैं, टाइम कितना हुआ है, 9:29 हो चले हैं। आर्टिस्ट ऑफ द वीक में साहिर लुधियानवी जी के लिखे हुए गीत, तो उन्हीं की फिल्म इज्जत विच वॉज रिलीज इन 1968, उस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनाया आप सभी को ये गीत। जी हाँ, थर्ड एंड आखिरी आवर ऑफ थ्रिलिंग थर्सडे आप लोगों ने साथ दिया। कई लोगों के गुड नाइट के मैसेजेस शुरू हो चुके हैं, बिल्कुल हमारी तरफ से भी गुड नाइट, लेकिन आधा घंटा और बाकी है। और अब जो गीत आने वाले हैं ना, वो तीनों भी गीत सुन के आप कहेंगे कि नहीं तीन नहीं, ये चार गीत अभी और बाकी है। तो वो चारों गीत सुन के आप कहेंगे कि ब्यूटीफुल ट्रैक्स हैं, मतलब हमने आपको गुड नाइट बोल दिया लेकिन हमारा रेडियो जो है शुरू था। बिकॉज नेक्स्ट ट्रैक इज लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ में तेरे मेरे सपने। What a beautiful track this one is, Jeevan Ki Bagiya.
1: The Evening Show with Ashwini. Like a gold. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: This is Like a Gold.
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइक अ गोल्ड रेडियो लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स पर.
0: दिस इज अश्विनी ऑन लाइक अ गोल्ड travelhubworld.com. कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट travelhubworld.com.
4: Rock.

0: Iconic duo Ruffy and Kishore, featuring Fahad Yaf, accompanied by seven-piece band and Manisha Sharma.
1: Golden era ke evergreen gaano ko relive kijiye. Sunday, 6 September, 5 PM at Hero Arts Center. Tickets start from just £25. Book tickets at heroartscenter.com. Box office ka number hai 02023737161.
0: Exclusive radio partners Leica Radio Network.
2: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com।
3: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime on Leica Gold.

0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 130.53 इंडियन रुपी, 378.33 पाकिस्तानी रुपी, 450 श्रीलंकन रुपी, 166.63 बांग्लादेशी टाका, 89.89 अफगान अफगानी, 1.36 यूएस डॉलर्स, 176.43 केनियन शिलिंग, 63.57 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £106.83 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए आखिरी बार मिला लेते हैं घड़ियां. जी हाँ, आखिरी बार, आखिरी आवर में. सो थ्रिलिंग थर्सडे मनाया आपने और हमने. जी हाँ, देखिए आखिरी आवर, बस आखिरी बार बात करनी तो अब घड़ी भी कह रही है और जुबा भी कह रही है कि बाय कर ही दो तुम. ठीक है, ज़रूर बाय कर देंगे. सो गोल्ड नाइट्स ओवरनाइट सर्विसेज ज़रूर सुनेगा. लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2 ज़रूर सुनेगा. जी हाँ, मुझे याद है मैंने कल आप सबसे कहा था कि फ्राइडे मैं नहीं आ पाऊँगी स्टूडियो में, लेकिन ना अभी एवरीथिंग इज सॉर्टेड एंड आई कैन कम बैक अगेन टुमारो. सो फैंटास्टिक फ्राइडे मनाएंगे आप और हम साथ में, जहाँ पे आरजे अश्विनी बन जाती है डीजे अश्विनी. खाना पीना करके बैठेगा क्योंकि कैलोरीज बर्न करनी है. आप में से कई लिसनर्स ने मुझे अपनी अपनी पसंद के ढिंचक गाने, मतलब जिसपे पैर थिरकेंगे और डांस होने वाला है, ऐसी लिस्ट मुझे भेज दी है. पूरी पूरी कोशिश होगी कि प्ले लिस्ट में वो सारे गाने इंक्लूड किए जाए. सो गज़ल या कवाली मैं क्या सुनाने वाली? जी मैं आज गज़ल सुनाने वाली. सो तलत अज़ीज़ एंड लता मंगेशकर की आवाज़ में बाजार फिल्म से लिया है, ली है ये गज़ल. गज़ल लिया नहीं होता ना, ली है. जी हाँ, गज़ल ली है. एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट गज़ल्स एज वेल, फिर छिड़ी रात. एंड आखिरी गाना विल बी प्यार झुकता नहीं इस फिल्म से तुमसे मिलकर. एंड हमारी जो टैगलाइन होती है शो ख़त्म करने से पहले, प्यार बड़ी खूबसूरत चीज़ है तो प्यार दो, प्यार लो. एंड ज़िंदगी खूबसूरत है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ. आपके जहन और आपके दिमाग में जो चल रहा है प्लीज़ कम्युनिकेट करें सामने वाले को, बताएं. दे कैन ऑन रेडियो माइंड. एंड कल मिलेंगे आपसे, तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. हमारे अच्छे दिन आ गए, मौसम अच्छा हो गया है ना, ठंड आ गई है. ओके जी, ऑन दैट नोट आई से हियर गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर.
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: गोल्ड।
1: अपनों को, आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: Dad, Dad, Dad!
3: What's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
3: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
3: Oi, bale bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: इमेजिन टर्निंग योर नेक्स्ट केक बॉक्स into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for four people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. T&Cs apply.
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
7: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough, on Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
9: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
10: मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com।
11: ताज़ा करें अपनी यादें लाइका गोल्ड के साथ।
12: I'm

0: सब क्लॉस अब है स्टॉप क्लॉस.
1: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
2: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
1: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
2: And you didn't pay those massive roaming charges?
1: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
5: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com.
6: Leica Gold पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत.

पास जैसी हो न हो किस्मत की वो हेती, न टिंगनी इस कदर हो कि मेरी मालूम हो बेटी।

नाजफी बपाली तिरछी तिरछी तिरछी तिरछी नजर वाली वो गोरी गोरी गोरी वो गोरी हाथ के काली जो जहाँ के वाली मिल जाए तो फिर वक्त मिल जाए तो फिर चाय बनाने वाली एक चाय की प्याली।

0: ले फूफा के भतीजे लोरी लोरी लोरी हे मई लोरी अरे लोरी सुना सुना के सुलाती है नारियां ये मर्द भी कर सकते हैं।
1: मर्द जिंदाबाद।

जला मुझको गुस्सा ना दिला, तुझसे फरियाद करूं ले तेरे पाँव परूं, कहना मेरा मान ले तू, ये भी अब जान ले तू, ये भी अब जान ले तू, जान ले तू, जान ले तू, थाकी गयो फरी पर नहीं समझ तो बेशरम। हाँ अब भी अगर तू चुप न हुआ तो तोड़ दूंगा।